0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो ईबीबी काय और रेडियो के कैन और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओडो डोना मनी यो टेका रमोक लोना चोली को दे पलेजी.